0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व

0: नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th Annual Convocation Ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahmakumari's campaign Spiritual Awakening for World Renewal and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Centre at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Vikasit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahmakumari's Nadiad on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said, climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday.

0: Suhani Subha. Suhani Subha.
1: दोस्तों स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 7:01 हो चला है और वक्त है सुहानी सुबह का। आज सुहानी सुबह लेकर हाजिर है आपकी दोस्त पॉपी और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा 8 बजे। वैसे जब शुरुआत हम कर रहे हैं तो आइए क्यों ना एक भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर की सुबह एक बार फिर पॉपी है आपके साथ 100.1 FM गोल्ड पर। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए सुहानी सुबह है पॉपी के साथ।

सत्यम शिवम सुंदरम से आपने सुना टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज में। और आपको बताऊं दोस्तों कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हम आज ये कहेंगे कि बेटियों को खिलाओ। जी हाँ, खेल में उनका इंटरेस्ट, उनका जो जोश है उसे बढ़ने दो, क्योंकि बेटियां कमाल कर रही हैं आज की दुनिया में। आज के इस नए भारत में, इस डिजिटल इंडिया में बेटियों ने जो कर दिखाया है या दिखा रही हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। जी हाँ, एलोवेनल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियाई खेलों के निशानेबाजी प्रतियोगिता के पहले दिन 2-2 रजत पदक जीतकर अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की है। मतलब यही तो है, यही तो हम चाहते हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की

की हिनाता ताइची ने 253 पॉइंट्स लेकर गोल्ड जीता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ हमारी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, आपको साथ ही बताना चाहेंगे कि चैंपियन भारत ने रविवार को एशियाई खेलों की महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बनाई है। टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाकर भारत के लिए एक और पदक सुनिश्चित कर लिया है। शेफाली वर्मा ने 49 गेंद में नाबाद 100 रन की पारी खेलकर T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना पहला शतक जड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने 4 विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाया। बांग्लादेश की पूरी टीम 15.4 ओवर में 81 रन पर ही आउट हो गई। तो ये थी कुछ खास खबर जो बेटियों को लेकर है, जो हमारे देश की महिलाओं को लेकर है। और भी है, मुझे और भी बहुत बातें आपको बताना है। दीपिका ने 8 गोल से महिला टीम ने उज़्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। जी हाँ, दीपिका यानी कि हॉकी खेल में दीपिका ने शानदार खेल का नमूना पेश करते हुए 8 गोल दागे, जिससे भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को यहाँ एशियाई खेलों के पूल बी में अपने पहले मैच में कमजोर उज़्बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों कही ये बात कि बेटी पढ़ाओ के साथ बेटियों को खिलाओ, उन्हें मैदान का रास्ता दिखाओ, उन्हें खेल की दुनिया से जोड़ो, क्योंकि वो आगे जाकर क्या कर सकती हैं ये हमारे और आपके सोच से बहुत बहुत परे है, और वो बहुत आगे जा सकती हैं और वो देश का नाम रोशन कर सकती हैं। तो ऐसी ही बातों के साथ सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम, और हम हैं आपके साथ 8 बजे तक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह।

0: ডাউনলোড করুন এবং রিপোর্ট করতে শুরু করুন।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
2: जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कुछ पल पहले कि ये जो कॉल्स जो आते हैं, ये कॉल्स बड़े ही लुभावने होते हैं और दिल को लुभाते हैं। और ख़ासकर जब आज का तकरीबन हर शख्स अपने आप को अकेला पा रहा है, तो ऐसे में रेंट अ फ्रेंड का लालच दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अकेलेपन को हथियार बनाकर साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया तरीका खोज निकाला है। रेंट अ फ्रेंड का लालच देकर लोगों को चुना लगाया जा रहा है, लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों से पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। मतलब इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और वो हो जाता है। पुलिस ने इस नए साइबर फ्रॉड के प्रति हर नागरिकों को ये आगाह करते हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जालसाज सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसमें ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल, क्लोज फ्रेंड, ये सब थीम देकर एक साइट खोला जा रहा है और इनको किराए पर उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है। विज्ञापनों में बहुत ही आकर्षक युवक और युवतियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो असल में है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये फर्जी तस्वीरें बनाई जाती हैं। इन्हें दिखाकर धोखा किया जाता है और विज्ञापन में दावा किया जाता है कि ये आपके साथ पार्टी, आपके

साथ ट्रिप, या अभी हाल में जो एक बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है दुर्गा पूजा के दौरान, हर समय आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, आपको एक मेंटल कंफर्ट देने के लिए तैयार हैं, और इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। साथ में ये भी कहा जाता है, विज्ञापन के नीचे दिए गए बुक नाउ विकल्प आता है आपके मोबाइल पर, और उस पर क्लिक करते ही यूज़र को रजिस्ट्रेशन और एडवांस जो बुकिंग है वो जमा करने का कहा जाता है, और इसके बाद जो होता है वो दिल को मंजूर नहीं, दिमाग को मंजूर नहीं, क्योंकि उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी न किसी झांसे में जाकर अपना जो हार्ड अर्न मनी, जी हाँ, जो आपके बैंक में है, जो आपके पास है, वो लूट लिया जाता है। तो इस बात से ज़रा आप बिल्कुल सतर्क रहें, और ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, ऐसे किसी सोशल साइट में जाकर क्लिक ना करें। दोस्ती उनसे कीजिए जो वाकई आपके दोस्ती के काबिल है, और दोस्त ऐसे वैसे दोस्त नहीं मिलते हैं। अगर दोस्त मिलते हैं तो एक समय दिया जाता है, और उस समय के बाद दोस्ती को कबूल किया जाता है। तो ऐसे झांसे में बिल्कुल ना पड़े। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आपके लिए, सभी जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: एक महत्वपूर्ण सूचना, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल युगायुग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के माध्यम में 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक घरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा के साथ अवश्य होना चाहिए, उल्लेख उनका होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7001/2 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.westbengal@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख पर समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो और किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष संख्या 2212020502212026012 या फिर 2212050000 पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो भी संख्या हमने आपको बताया उसके पहले 033 अवश्य जोड़ दें। डाक अदालत एवं पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत एवं पेंशन अदालत शब्द लिखना जरूरी है। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विविध मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी एक आवश्यक सूचना। साथ ही आपको बताना चाहें कि अधिकक्ष RMS SB मंडल की अध्यक्षता में RMS SB मंडल की एक डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को दोपहर 12 बजे अधिकक्ष RMS SB मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा 4th मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के

माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SB मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों की अथवा समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmsbdn@gmail.com ईमेल के विषय पर एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधिकक्ष RMS SB मंडल हावड़ा 7-11101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वो दिनांक 28 सितंबर तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों अथवा शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में उपस्थित रहें। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधिकक्ष से दूरभाष संख्या 0332641-5949 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथासमझ साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामले और नीतिगत मामले में संबंधित प्रकरणों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना ये आवश्यक सूचना। 7:25 त्रुटि की घड़ी डिजिटल क्लॉक कह रही है कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम जारी रखते हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि बहुत सी बातें हैं जो मुझे बताना है, खास करके जो लोकल कम्यूटर्स हैं जो सुबह सुबह ट्रेन के लिए बहुत परेशान होते हैं और जिन्हें जाना होता है, जो खुद अपना पर्सनल व्हीकल नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेचुरल रिसोर्स को, जी हाँ, जो कि पेट्रोल एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको ज़रा हम कम मात्रा में यूज़ करें। और कहते हैं ना कि देश के प्रगति में अपना योगदान दें, तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन चलिए एक पहले एक छोटा सा ज़्यादा नहीं 4:14 का गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए, साथ रहिए। बहुत ही प्यारा गीत है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी दोस्तों के लिए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

हाँ तो दोस्तों, जो मैं बता रही थी इस गीत के पहले, मेट्रो यूज़र्स, जी हाँ, जो लोग सुबह सुबह उठकर मेट्रो को अवेल करते हैं और ये मेट्रो रेल पूरे शहर को जोड़ने की कोशिश में जो लगी हुई है, उस सिलसिले में एक दिलचस्प बातें आपको बताना चाहूँगी और वो ये है कि ऑरेंज लाइन, जी हाँ, ऑरेंज लाइन पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है, मिलने को है। आप जानते हैं कि मेट्रो लाइन के कई डिविजन्स हैं, इन्हें जोड़ा जा रहा है, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, और ये जो ऑरेंज लाइन है वो है कवि सुभाष और जय हिंद विमान बंदर मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ता हुआ लाइन, जो कि बेलेघाटा आईटी सेंटर सेक्शन से पहली बार पुश ट्रॉली, जी हाँ, पुश ट्रॉली निरीक्षण इसमें किया गया है। ये परियोजना की दिशा में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करीब 32 किलोमीटर लंबे कवि सुभाष जय हिंद विमान बंदर मेट्रो प्रोजेक्ट को वर्ष 2010 में मंजूरी मिल गई थी और इस परियोजना का निर्माण 5 चरणों में किया गया। परियोजना के पहले 2 चरणों यानी कि कवि सुभाष से हेमंत मुखोपाध्याय और हेमंत मुखोपाध्याय से बेलेघाटा का काम पहले ही पूरा हो चुका है और इन दोनों हिस्सों में मेट्रो सेवाएं शुरू भी हो चुकी हैं और यात्रियों को नियमित रूप से ये सेवा मिल रही हैं। वहीं तीसरे चरण के तहत बेलेघाटा से आईटी सेंटर तक का जो सेक्शन है वो अब काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और ट्रैक निर्माण कार्य के बाद विद्युतीकरण की शुरुआत की तैयारी भी की जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस ये जो रूट है यानी कि बेलेघाटा से आईटी सेंटर सेक्शन में पहली बार पुश ट्रॉली निरीक्षण किया गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द ये जो लाइन है, जो ऑरेंज लाइन, हम इसे अवेल कर लेंगे। और जाहिर सी बात है, मेट्रो से लोगों को बहुत सुविधा होती है। बहुत से लोग हैं जो मेट्रो के बिना सोच ही नहीं सकते हैं और बड़ा मज़ा आता है ना कि ज़मीन के नीचे धर धर धर करते ट्रेन चली जाती है, न कोई रुकावट, न कोई परेशानी और आप बिल्कुल निर्धारित समय पर आप पहुंच जाते हैं। वैसे एक बात और बताना चाहूँगी ट्रेन से जुड़ी हुई, और वो ये है कि देवटी स्टेशन का नाम बदलने जा रहा है। एक बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। हावड़ा जिला के देवटी स्टेशन का नाम बदलकर कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर रखने की मांग की गई है। देवटी स्टेशन का नाम बदलकर साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर रखने की जो मांग की है वो एक बहुत ही अच्छी बात है और आप सभी जानते हैं कि शरद चंद्र ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवता को मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान के रूप

में सामने रखा। उनके साहित्य में समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की जो बातें हैं वो उसमें हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी, प्रमुखता दी। तो जाहिर सी बात है एक ऐसे इंसान के नाम पर स्टेशन का नाम होने जा रहा है, ये एक गर्व की बात है और ये बदलाव बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी 7:33:51, आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। सुनते रहिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

वैसे तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी खबरों से रूबरू कराती हूँ, लेकिन एक खबर देना चाहूँगी कि हाल ही में, जी हाँ, शहर के बहुत ही व्यस्त

एकदम माँ फ्लाई ओवर पर चीनी मांझे का एक खतरनाक सिलसिला सामने आया है और रविवार दोपहर जी हाँ चीनी मांझे के चपेट में आने से एक बाइक चालक का गला जो है वो कट गया और सिर्फ इतना ही नहीं वो अनियंत्रित होके सड़क पर गिर पड़ा और हादसे का शिकार हुए चालक को बचाने के प्रयास में पीछे से आ रही जो अन्य बाइकें थी वो भी आपस में टकरा गईं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होती है तो सिर्फ जो इंसान जिस पर हुआ है सिर्फ वही नहीं बल्कि एक चेन एक्सीडेंट होने लगता है, उसके पीछे जो है वो भी हादसे का शिकार हो जाता है। और ये खबर जब पता चला और घायलों को तुरंत बिल्कुल इलाज के लिए भेजा गया और जो कार्रवाई करनी थी वो भी की गई। अब कार्रवाई की गई जो चीनी मांझा इस्तेमाल कर रहा था घड़ी, मतलब माफ़ कीजिए, जो घोड़ी जिसको कहते हैं, जो पतंग के ज़रिए चीनी मांझा का इस्तेमाल किया गया था। वैसे ये एक सूचना या नोटिस या विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि शहर में कहीं भी चाइनीज़ मांझा, चीनी मांझा जो है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, बहुत ही धारदार होती है और वो धारदार होने के कारण दुर्घटना होना बहुत संभव है और होता भी है। तो ये जो चीनी मांझे का जो इस्तेमाल है, मैं आप सबसे बार बार, पहले भी मैंने कहा है कि इसको इस्तेमाल न करें, खेल को खेल रहने दें, खेल को एंटरटेनमेंट बनाएं, खेल को खुशी का हिस्सा बनाएं, लेकिन कि आपके खेल से कोई घायल हो जाए, आपके खेल से कोई पीड़ित हो, परेशानी हो। अब आप सोचिए कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके घर में क्या गुजर रही होगी, क्या चल रहा होगा। मुझे मालूम नहीं कि वो है भी नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अवश्य ठीक हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे जिसके ऊपर ये घटना घटती है वो इस दुनिया से ही मतलब रुखसत ले लेता है। तो मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप सब प्लीज़ इस चीज़ को रोके, इसकी रोकथाम करें ताकि कोई भी आपके खुशी से उसे तकलीफ ना हो और किसी का परिवार इस तरह से ऐसा कुछ सिचुएशन में ना आए जिसे ज़िंदगी भर का अफसोस रह जाए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि अच्छी अच्छी बातों से दिन की शुरुआत करूं, लेकिन ये गुजारिश बार बार आप सभी सुनने वालों दोस्तों से हैं कि प्लीज़ इस पर रोकथाम करना आपका हक है। और अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे भी समझाएं, और अगर वो नहीं समझ रहा है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं उठती है, तो प्लीज़ उसके खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि इससे समाज को नुकसान है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ना करें और रोकें। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी 7:46, अगला गीत आपको सुनाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत है। मेरी ये भी कोशिश रहती है कि सुबह सुबह आपको बिल्कुल रोमांटिक ट्रैक से रूबरू कराऊं ताकि आपका जो दिन है वो खुशनुमा बना रहे। सुबह सुबह अच्छे अच्छे संगीत सुनने से, संगीत तो सभी अच्छा होता है लेकिन दुख भरी गीतों को मैं सुबह नहीं बजाती हूँ, और चाहती हूँ कि आपका जो दिन है वो बिल्कुल खूबसूरत ढंग से आप बिताएं। तो आइए, पेशे खिदमत है अगला गीत।

लता और मोहम्मद रफी की आवाज में डुएट सुना आपने। फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और वक्त हो चला है अब आपको मौसम के बारे में जानकारी देने की। तो आपको बताएं कि अगले 24 घंटे मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो ये हवाओं में जो नमी है वो तकरीबन 88% होने की संभावना है। AQI 80 रहेगा, यानी कि हवा जो है वो मॉडरेट है। और दिन का सबसे ज़्यादा तापमान 33 डिग्री और रात को 27 डिग्री जाएगा। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक तेज़ गरज के साथ बारिश की पूरी संभावना है। और शाम को बादल रहेंगे पर बारिश के जो चांसेस हैं वो कम है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब बारिश है तो रेनकोट और अम्ब्रेला साथ में लेकर निकलें। साथ ही पिछले 24 घंटे में जो तापमान दर्ज की गई है उसके बारे में भी आपको बता दूं। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्वाभाविक से 3.6 कम रही। और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस थी, जो कि सामान्य थी। बारिश हुई है 11.2 मिलीमीटर। तो ये थी मौसम के बारे में जानकारी। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाएंगे। फिल्म का नाम है वक्त और आवाज़ है आशा भोसले की।

लेकिन एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने बचपन में पढ़ा था, जी हाँ आप सबने पढ़ा होगा कि 21 सितंबर को इक्विनॉक्स मनाया जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है बराबर रात और दिन। जिस दिन सूरज सीधा पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर होता है और उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ये एक बार सितंबर में होता है, 21 सितंबर, 22 सितंबर, और एक बार मार्च में होता है, 21 मार्च या 22 मार्च। इसे आज का जो इक्विनॉक्स है उसे ऑटम इक्विनॉक्स या शरद विषुव कहते हैं। जी हाँ, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज दिन और रात बराबर होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑफिशियली शरद ऋतु यानी कि ऑटम शुरू हो जाता है और इसके बाद दिन छोटे और रातें जो हैं लंबी होनी शुरू हो जाती है दिसंबर सोल्स्टिस तक, यानी कि 21 दिसंबर या 22 दिसंबर तक। सदर्न हेमिस्फीयर में इसी दिन स्प्रिंग यानी कि बसंत की शुरुआत होती है, तो इसलिए आज का जो दिन है उसमें रात और दिन जो है वो बराबर का होगा। ये थी आज के दिन की खासियत ज्योग्राफिकली। वैसे दिन के वो जो इतिहास के जो पन्ने हम हर रोज़ पलटते हैं अगर उसको देखें तो आज ही के दिन, जी हाँ दोस्तों आज 21 सितंबर है, आज ही के दिन 1964 में माल्टा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही के दिन सन 1981 में बेलीज ब्रिटेन से भी आज़ाद हुआ। तो ये थी आज के दिन की खासियत। और वक्त हो चला है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:57, और आपको बता दूं कि अब से अभी तो मैं आपसे बस इजाज़त लेने वाली हूँ क्योंकि आप सुन रहे हैं FM गोल्ड और 9:10 पर। जी हाँ, 9:10 पर एक बार हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे कार्यक्रम रसधारा में। वैसे ये रसधारा आपको मालूम है कि संचयिता चैनल में होगा और वहाँ से हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर यहीं पर, जी हाँ इसी हॉट ब्लू सीट पर बैठेंगे 10:02 पर, लेकर आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम नॉन स्टॉप।

गपशप जहाँ पर सिर्फ मैं बातें नहीं करूँगी, आपके साथ भी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सी बातें मैं बताऊँगी। तो 9:10 10:02 पर आपके साथ जुड़ेंगे। और हाँ, 11 बजे भी आपको मालूम है, 11:10 पर लो आ गई उनकी याद आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। तो ये जो जुड़ने का जो सिलसिला है वो हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, सिर्फ हर दिन नहीं, हर रोज़ नहीं, साल के 365 दिन हम आपके साथ जुड़ते हैं एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो पर। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडियो की घड़ी 7:59 और ये कह रही है कि अब पॉपी आप आगे बढ़िए और आप भी अपने काम पर अपने दिन को वो कहते हैं दिन की शुरुआत कीजिए। फिलहाल इसके साथ पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार, बहुत जल्द बस कुछ लम्हों के बाद आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे। तो सुनते रहिए, साथ रहिए। फिलहाल आप सुन रहे थे एफएम गोल्ड और गोल्ड पर कार्यक्रम सुहानी सुबह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है PM किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। PM किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।

कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर

0: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
1: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
3: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के

0: প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনারা সরাসরি আপনাদের প্রিয় বন্ধুদের অনুষ্ঠান শুনতে পারেন, কেমন? আচ্ছা, সময় যেহেতু হয়ে গেছে সংবাদবিরতিতে যাওয়ার, তার আগে শান্তনু ওয়াইজ, শান্তনুদার মেসেজ পড়েনি, টেগর পার্ক কলকাতা 7:39 থেকে জানিয়েছেন, সুপ্রভাত তানিয়া, সুপ্রভাত দাদা, আজকের টপিক নিয়ে বলি যে আমি অনেক সময় ঘর থেকে বেরোবার সময় ঘরের চাবি কোথায় রেখেছি তা ভুলে যাই, চাবি খুঁজে যখন বেরোই অবভিয়াসলি লেট হয়ে যায়, তাই জন্য গত মাস থেকে একটা রুটিন করেছি যে ঘরে ফিরে ঘরের চাবি নিজের বীজ না এটা আমি আর বলবো না অন ইয়ার, কারণ সেটা না জানাই ভালো আপনার চাবি কোথায় থাকছে। যাই হোক, আর অমিতাবোধা সৌভিককে হ্যাপি বার্থডে জানি যে পুরো মেসেজ পড়বো সংবাদপত্রের।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका अब फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। उसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी गुट द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बीच अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की और एशियाई खेलों में भारत को 6 पदक, निशानेबाजी में 5 पदक मिले। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। कल से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौता करने का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच क्षेत्र में जारी अन्य संघर्षों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी प्रशासन यमन के हौसी विद्रोहियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हौसी समूह अमरीकी कर्मियों पर हमला न करने के लिए सहमत हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी गुट द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय मीडिया खबरों पर नजर रखने की सलाह दी है। इस बीच कतर ने भी सऊदी अरब पर हुए इन हौसी हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होने वाली इस बैठक में दोनों नेता संघर्ष कम करने और बातचीत फिर शुरू करने पर चर्चा कर सकते हैं। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार और विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारियों में जुटे हैं। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप और श्री जेलेंस्की के बीच हाल में हुई फोन पर बातचीत के बाद हो रही है। श्री जेलेंस्की ने इस बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि इससे कूटनीतिक प्रयासों को गति मिली है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने

0: श्री जेलेंस्की से रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमले रोकने का आग्रह किया। इन हमलों को ईंधन आपूर्ति में बाधा और डीजल की बढ़ती कीमतों से जोड़ा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमले नहीं करने की गारंटी देता है तो यूक्रेन रूसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोक सकता है। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नागा फिल्म निर्देशक थेजा रियो की फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीत लिया है। फिल्म अंग ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। ये इस वर्ष के लिए चुनी गई 12 फिल्मों में शामिल थी। इस साल से लागू नए नियमों के तहत ये पुरस्कार जीतने के बाद अब इसे गैर अंग्रेजी नागा फिल्म को आस्कर अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शामिल होने का सीधा रास्ता मिल गया है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए जूरी अध्यक्ष पाब्लो ट्रेपेरो ने निदेशक थेजा रियो के साहस, उनके अनूठे नजरिए और बेहतरीन फिल्म निर्माण कला की सराहना की। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता पर निर्देशक थेजा रियो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुरस्कार जनजातीय भाषा की फिल्म के लिए बेहद खास है। उन्होंने इसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों को समर्पित किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी निर्देशक थेजा रियो और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ये जीत पूरे भारत और नागालैंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जिसने नागा सिनेमा को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया है। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए रविवार रात मतदान समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का लगभग कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना तय माना जा रहा है। 3 दिन तक चले इस चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रात भर रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर भेजे गए थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान खत्म होने तक मतदान प्रतिशत 56.66% रहा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम 8वें स्थान पर खिसक गई। हालांकि टूर्नामेंट में अभी 6ठे दौर की बाजियां बाकी हैं और भारतीय महिलाओं के पास वापसी करने का पूरा अवसर है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत ने अब तक 6 पदक जीत लिए हैं। पार्थ माने, रुद्रांश पाटिल और हिमांशु ढिल्लों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में कल इलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने आज महिलाओं की 60 किलोग्राम ट्रेडिशनल MMA स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल स्वर्ण पदक के लिए श्रीलंका से खेलेगी। भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बीच अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज़।

0: दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगनाना संबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का सिलसिला जारी है। हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और पार्थ राकेश माने की भारतीय टीम ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will be on a 3-day

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर, लो आ गई उनकी याद।

दोस्तों, और कार्यक्रम की शुरुआत एक भक्ति गीत के साथ हमने की है। आपको मालूम है कि हर दिन हम कोई ना कोई किसी न किसी शख्सियत को लेकर आते हैं और उनके ऊपर पिक्चराइज किया हुआ या उनके द्वारा योगदान किया हुआ गीतों को हम सुनते हैं। फिलहाल हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है 11:16। आप जब तक अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या आपको सुनाएंगे, तब तक आइए मैं सुनाती हूँ एक और ट्रैक। सुनते रहिए, साथ रहिए। आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड पर, लो आ गई उनकी याद।

नहीं, हम आज भी मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं जी। जिसके बारे में आज हम कहना चाहेंगे या बताएंगे, उसको मैं ही नहीं, आप सब मिस करते हैं। किस तरह से मिस करते हैं, क्यों मिस कर सकते हैं या क्यों करते हैं, उसकी तो खास वजह यह है कि उसने छोटे से समय में, बहुत अल्प समय में, बॉलीवुड को इतना कुछ दिया, हिंदुस्तान को एंटरटेनमेंट, हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट की दुनिया को इतना कुछ दिया कि हम उसे वाकई आज के दिन बहुत मिस करते हैं।

शांतनु मित्रों की म्यूजिक डायरेक्शन में आपने भले ही ये गीत सुना, लेकिन आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत पर आज हमारा ये कार्यक्रम है। और आपको बताऊं कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में पैदा होते हैं, कुछ लोग अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री को अपना बना लेते हैं। सुशांत उनमें से था। उसे देखकर लगता था कि सपने मानो सच हो सकते हैं अगर उन्हें पूरी शिद्दत से देखा जाए। उसके जाने से एक फिल्म स्टार नहीं गया, हम सब के अंदर का वो लड़का चला गया जो बड़े शहर में अपना नाम बनाना चाहता था, अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ।

अब एक आवश्यक सूचना। अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की एक डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक और एमएसएसबी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा, 4th मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 71101 में गूगल मीट यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएसएसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतें अथवा समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक RMSSB मंडल हावड़ा 7111101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28 सितंबर तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों अथवा शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए सहायक अधिकक्ष से दूरभाष संख्या 2641-5949 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। साथ ही एक और आवश्यक सूचना जो आपको देना चाहेंगे वो इस प्रकार है। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल युगायुग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 में गूगल मीट अथवा वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित

पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212061 अथवा 0333221205000 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों तथा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखना होना जारी है। विशेष बात ये ध्यान में रखा जाए कि डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: लो आ गई उनकी याद में आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की।

सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते ही दिमाग में जहन में भारतीय सिनेमा का एक अत्यंत प्रतिभाशाली मेहनती और बहुमुखी अभिनेता का ख्याल आ जाता है, जिसने अपने मेहनत से अपने दम पर टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक का एक खास सफर तय किया, एक खास पहचान बनाई।

न जाने कितनी बार भी हम पुकार लें कि एक बार आ जा, लेकिन नहीं, शायद वो जहां पर हैं वहां से लौटना मुमकिन नहीं। मजे की बात यह है कि सुशांत 5 बहनों का इकलौता भाई था। पटना से दिल्ली आया। 2002 में उसकी माँ का निधन हो गया और वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। कहते हैं उस दिन के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पटना में अपने घर का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है। वो अक्सर कहते थे माँ होती तो सब अलग होता। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बचपन से ही बहुत बहुत बहुत ब्रिलियंट थे। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक आया था उनका, और तो और फिजिक्स नेशनल ओलंपियाड विनर थे। इंजीनियरिंग की 11 किताबें उसने 3rd ईयर में ही खत्म कर दी थी, लेकिन एक दिन शायद ये रियलाइजेशन आया कि उनका दिल किसी और चीज के लिए बना है। वो मशीन नहीं समझता, वो इमोशन समझता है, और शायद यही वजह थी कि पटना से उनका सफर शुरू हुआ बॉलीवुड की ओर। पहले श्यामक दावर के यहां बैकग्राउंड डांसर बने, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने डांस किया, फिर बैरी जॉन से एक्टिंग सीखी, और तो और नादिरा बब्बर के थिएटर में काम भी किया। और फिर क्या था, फिर आप सब जानते हैं, मानव देशमुख के रूप में वो घर घर में पहुंचा। पर जब वो टॉप पर था उसने सबसे बड़ा रिस्क लिया, टीवी का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर फिल्म में 0 से शुरू करी। वो कहते हैं ना, ऐसी होती है जो जिनके भीतर एक जोश होता है वो शायद कुछ ऐसा ही कर जाते हैं।

सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो जीते थे। काई पोछे में उसकी दोस्ती में सच्चाई थी, एमएस धोनी में उसके अंदर एक पूरे देश का जज्बात था, और छिछोरे में उसने हमेशा ये सिखाया कि हार के बाद भी जीना होता है। केदारनाथ और सोनचिरिया में उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो किताबें पढ़ता था, सितारे देखता था, टेलीस्कोप से चांद को देखता था। 50 सपनों की एक लिस्ट बनी थी उसके डायरी की। एक एक्टर चांद पर जमीन खरीदता है, ये बात ही उससे अलग बनाती है। वो भीड़ में होकर भी एक अलग सोचने वाली बात करता था, एक ऐसा इंसान था। हालांकि वो तारीख हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे जब खबर आई उस बात की जो दिल मानना ही नहीं चाह रहा था, दिल मानने को तैयार नहीं था। लगा जैसा, ऐसे लगता था कि जैसे कोई अपना चला गया हो। सोशल मीडिया पर उसकी मुस्कुराती हुई केवल तस्वीरें रह गई थी और लोगों की आंखों में चंद आंसू। उसे समझ आया कि कामयाबी, पैसा, शोहरत सब होने के बाद भी इंसान अंदर से कितना अकेला हो सकता है। हमने उनकी फिल्मों को प्यार दिया, पर शायद हमें से कुछ बातें समझ में ही नहीं आई। आज भी जब रात को आसमान में हम सितारे देखते हैं तो लगता है कि एक सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा।

है और वो सितारा सुशांत का है। बहुत सी एक उनकी डायरी थी और उस डायरी में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 50 सपनों को लिखा था। 50 सपनों की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 100 बच्चों को वो नासा भेजना चाहते थे, आयरन मैन सूट बनाना चाहते थे, चांद पर चलना चाहते थे, बच्चों को स्पेस के बारे में दिखाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, नॉलेज देना चाहते थे, पोलर लाइट्स देखना चाहते थे और हाँ साथ में एक रैप सॉन्ग लिखना चाहते थे। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर, एक छोटा सा बच्चा था उसके दिल में। उसके घर में टेलीस्कोप था जिससे वो रातों को सितारों को देखता था। उसने चांद पर जमीन भी खरीदी थी। वो लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलता था, राइट हैंड से लिखता था। लोग कहते थे कि ये लड़का फिल्मी नहीं है और वही उसकी सबसे खूबसूरत बात थी। काई पोछे में उन्होंने एक दोस्त को सपना दिखाना या उसके सपने को सच बनाना सीखा। एमएस धोनी के लिए उन्होंने 2 साल तक धोनी की तरह चलना, बोलना, बैटिंग करना सब कुछ सीखा। और तो और धोनी ने खुद कहा था, मुझे लगा मैं ही स्क्रीन पर हूं। छिछोरे उसके सबसे इमोशनल मैसेज, हम हार जीत से बड़े हैं, हम लाइफ हैं। और आज ये डायलॉग जब हम सुनते हैं ना तो सही में कहीं पर आंख से आंसू निकल आते हैं। दिल बेचारा आखिरी तोहफा था जिसमें वो कहते हैं, जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं। आज इस छोटे से कार्यक्रम में, बहुत अल्प समय के कार्यक्रम में, सुशांत सिंह राजपूत को हमने याद करने की कोशिश की। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। सुनते रहिए, साथ रहिए। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद और हमारा ये सेगमेंट 12 बजे तक चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड में लो आ गई उनकी याद।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 11:54 और 12 बजे आप जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में द न्यूज़। 12:10 पर एक बार आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगी शर्मिष्ठा राहा लेकर गोल्डन मेलोडीज। फिलहाल कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनाते सुनाते पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और पल, लेकिन हाँ हर पल में जीना सीखिए और जीते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के

0: पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She informed that the country now provides pharmacovigilance data to the WHO patient safety database. The minister further highlighted that India has risen from the 123rd rank in 2014 to 8th rank in providing this data to the WHO. President Robert

विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबे खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Jatra Party won 324 seats in the previous election. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Choi in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई करीब 58% वोट हासिल किए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु पुदुच्चेरी कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता अब समाचार विस्तार से केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान चमड़ा और जूते इंजीनियरिंग उत्पाद फार्मास्यूटिकल्स कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे ये समझौता सेवाओं निवेश और पेशेवरों विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा

0: खेल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: India today has risen from the
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा

0: से जुड़ने और राज्य में नशा मुक्त राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाश समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: রকমের।
1: হ্যাঁ, এখানে সাকিনা একটা অদ্ভুত চরিত্র। সাকিনা হচ্ছে সরদারি বেগমের মেয়ে, এবং এই সাকিনা কেমন সেই গল্প আমরা ফিরে এসে বলবো আপনাদের। আপনারা যারা দেখেছেন তারা জানেন, কিন্তু যারা দেখেননি তাদের জন্য গল্পটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, কারণ 3:10 আমাদের একটি সংবাদের বিরতি রয়েছে,
2: 3:00।
1: 3:10 আমরা ফিরে আসবো, 3:10 এই সময়টুকু সংবাদ বিরতি, তাই 3:10 যখন আমরা ফিরে আসব তখন আমরা সেই কথা বলবো। এবং সরদারি বেগমের এই যে আমরা বারে বারে বলছি যে তার সঙ্গীতের প্রতি তার যে টান বা মোহ বা ডিভোশন, যেটাই বলি না কেন,
2: সেই ডিভোশন বলাটাই ভালো।
1: হ্যাঁ, একেবারেই তাই, ডিভোশন বলাটাই ভালো। কারণ কেন, মানে কতগুলো দিক থেকে দেখানো হয়েছে যে তিনি কতটা মানে ডিভোশন তার ভিতরে রয়েছে, কতটা আনুগত্য রয়েছে সঙ্গীতের প্রতি, সেইটাও কিন্তু আমরা এই ছবির মাধ্যমে, এই এক একটা ঘটনার মাধ্যমে, ওই যে বলছিলাম না যে পরতে পরতে উঠে এসেছে সরদারি বেগমের জীবন কথা, এবং পুরো ছবিটাই প্রায় ফ্ল্যাশব্যাকে, কারণ একদম মানে প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় যে প্রোটাগনিস্ট তিনি মারা গেছেন, এবং তারপরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে পর্দা ওঠে।
2: হ্যাঁ,
1: তো এই যে পর্দা ওঠার এই বিষয়টা, এটা আমরা শ্যাম বেনেগালের অনেক ছবিতেই দেখতে পাই, ফ্ল্যাশব্যাক বা একটু অন্য রকমের ট্রিটমেন্ট, যে ট্রিটমেন্টটা সাধারণভাবে দেখা যায় সেই ট্রিটমেন্ট নয়।
2: মানে ভাবো, মূল যে চরিত্র ছবির একদম শুরুতেই তিনি মারা যাচ্ছেন, এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক নয়। জেনারেলি এই ধরনের ট্রিটমেন্ট সাধারণ আমরা ছবিতে জেনারেলি পাই না।
1: আমরা সরদারি বেগম নিয়ে আরও কথা বলবো 3:00 পরে, আমরা 3:10 যখন ফিরবো তখন আবার সেই
2: গল্পে গানে সবকিছু নিয়ে আবারও ফিরে আসবো। সঙ্গে থাকুন 100.1 FM গোল্ড টিউন করে।
3: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
4: This strategic partnership.
5: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
3: इस समझौते से सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जनसंबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
6: Today we have around 1150.
7: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
6: Which will make a big change in times to come.
3: दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा के सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुन टो से हार के बाद कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said the free trade agreement between India and New Zealand will come into force on the 20th of next month on the occasion of Dashera festival. Addressing a conference in New Delhi, Mr. Goyal said the strategic partnership reflects the shared ambition of both the countries to deepen the cooperation and includes the goal of doubling bilateral trade to almost 35,000 crore rupees in the next 4 to 5 years.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
0: The free trade agreement will open new opportunities for Indian exports, including textiles and apparel, leather and footwear, engineering goods, pharmaceuticals, agriculture and processed food products. At the same time, New Zealand will gain enhanced access to the Indian market for products including wood, wool, sheep meat and raw leather hides. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country, and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. Union Minister of Agriculture Shivraj Singh Chauhan has called upon the residents of Punjab to connect and support Nasha Mukt Punjab Yatra and contribute in making the state drug-free. Addressing the gathering at Talwandi Sabo in Bhatinda today, From where he flagged off the fourth phase of the Yatra, Mr. Chauhan blamed the Punjab government for not meeting the deadline set by it many times for weeding out drugs and drug mafia from the state. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force ANTF heads of states and union territories in New Delhi tomorrow. The two-day conference, which will be organized by the Narcotics Control

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से सेवाओं, निवेश, पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं। ये संबंध व्यापार और निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्यों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। बठिंडा के तलवंडी में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की संभावना है। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंच गए हैं। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालन तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित करता है। इसमें भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। जापान में एशियाई खेलों में आज पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। उधर भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
5: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans.
1: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
5: A delegation from Fuji Film India, led by its managing director Koji Varda, today called on Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda in New Delhi. During the interaction, Mr. Nadda appreciated Fuji Film India for dedicating its first serial numbered Made in India endoscopy system to the nation through AIIMS New Delhi. The delegation highlighted the growing role of advanced medical technologies, including flexible endoscopy and minimally invasive treatment, while supporting improved patient outcomes and shorter recovery periods. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said that India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country. She also said that 25 countries in the world recognise and accept the Indian pharmacopoeia, and added the country now provides pharmacovigilance data to WHO patient safety database. The Department of Telecommunications has cautioned citizens against fraudulent issuance of SIM cards, misuse of telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers. It has asked citizens not to share or transfer SIM cards issued in their name to others. The department has also advised citizens to refrain from procuring SIM cards through fake documents. Tensions between United States and Iran remain high, with both sides issuing fresh threats to each other, while there are also indications that diplomatic opening might be emerging in the conflict. Iran's military has claimed that it has information about U.S. preparations to resume attacks on Iran and has warned that any new U.S. attack would trigger retaliation against American bases and interests across the West Asia region. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Vice President of UAE, Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. In a social media post, Mr. Modi said that his efforts to serve society will be cherished by generations to come. At the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event at Nagoya in Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudraksh Patil clinched the bronze. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial bagged the bronze medal in the women's 60kg traditional semi-final. In badminton, Indian men's team defeated Bangladesh 3-0 to reach the quarterfinals today. Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex surged 564 points to close at 74,859. And that is the end of this news bulletin.
6: আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি প্রিয়া বিশ্বকর্মা। মৎস্যক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় 9 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা রাজ্যের হাতে তুলে দিয়েছে। মিশন অমৃত সরোবর প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো রুক্ষ এলাকায় 6টি অমৃত সরোবর তৈরির অনুমোদনও মিলেছে। নিউ টাউনের তাজতাল কুটিরে আজ কেন্দ্রীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিগত 5 বছরে মৎস্যক্ষেত্রে যে কাজ হয়নি তা মাত্র 4 মাসে সম্পন্ন হয়েছে। বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও সারা দেশে মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গকে অগ্রণী স্থানে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট এবং আসাম এই 3 রাজ্য থেকে মোট 500 টন ইলিশ প্রতিবেশী বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
7: 500 টন মছলি গুজরাট সে হিলসা, বঙ্গাল কা হিলসা আর আসাম কা হিলসা বাংলাদেশ কে হ্যায়। ইসকে পহলে হাম লোগ সুনতে থে कि बांग्लादेश से हिंसा यहाँ आता था, अब हमारा हिंसा बांग्लादेश जा रहा है, यही इस देश की उपलब्धि है। और आने वाले समय में हिंसा को भी कैसे हम प्रमोट करें यहाँ के हिंसा को, ताकि वो पूरी दुनिया के में छा जाए। मड क्रैप की काम डिमांड कई देशों में काफी है, तो मड क्रैप को कैसे विकसित किया जाए, ये सारी बातों पर चर्चा हुई है।
6: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আজকের বৈঠকে সুন্দরবন সহ রাজ্যের উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তরবঙ্গের ঠান্ডা জলে মাছ চাষ, মৎস্যজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণদান, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় আরও বেশি মাত্রায় মৎস্যজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পূর্বতন সরকারের সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত থেকেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
8: প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় কি করে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ফিশারম্যানকে যুক্ত করতে পারি এবং আপকামিং প্রজেক্টগুলোতে কিভাবে আমরা ইনক্লুড করতে পারি, সেগুলো ইন ডিটেলস ডিসকাস হয়েছে। যে লাস্ট 4 মাসে পশ্চিমবঙ্গ ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, ভারত সরকারের অল দ্য স্কিমস অলরেডি অন বোর্ড আমরা করেছি, পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছে। আমরা আসার পরে প্রায় 280,000 পোর্টালে নাম অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, 120,000 ফিশারম্যান রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়েছে।
6: রাজ্যে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানীর সঙ্গে মুম্বাইতে বৈঠকে বসছেন। ইতোমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মুম্বাই পৌঁছেছেন, আজ রাতেই তাঁর ফেরার কথা। আইন শৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামীকাল ফের উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন। সকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তাঁর কোচবিহার বিমানবন্দরে নামার কথা। সেখানে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। জেলার বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনও করতে পারেন তিনি। এরপর তিনি যাবেন আলিপুরদুয়ার। সুভাষিনী চা বাগান সংলগ্ন ময়দানে বনদপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ব গন্ডার দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন সময় বনদপ্তরের অভিযানে উদ্ধার বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পোড়ানো হবে, স্কুল পড়ুয়াদের জন্য থাকছে বিশেষ প্রদর্শনীও। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে আজ বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন। বর্তমানে রাজ্যে 19টি ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে, তা বাড়িয়ে অন্তত 42টি করার প্রস্তাব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। রাজ্যে 42টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য একটি করে ট্রাইব্যুনাল গড়ে তোলাই কমিশনের লক্ষ্য। আগামীকাল সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী এসআইআর সংক্রান্ত 13টি মামলার একযোগে শুনানি হওয়ার কথা। সেই শুনানিতেই ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা আদালতে তুলে ধরবে নির্বাচন কমিশন। খাম প্রতীক হাতছাড়া হওয়ায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ एफएम गोल पर, 100.1 एफएम गोल पर, लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
0: जी हाँ, चाय एंड क्लासिक्स है प्रोग्राम का नाम, और आज की शाम के चाय के साथ मेरे पास आपके लिए कोई फिल्मी गपशप नहीं है, कोई पुरानी फिल्म का किस्सा भी नहीं, बल्कि एक छोटा सा सवाल है। ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपके घर के किसी पुरानी अलमारी, किसी किताब के पीले पड़ चुके पन्नों में, या फिर आपके बचपन की किसी याद में छिपा हो। सवाल है, आखिरी बार आपने सिर्फ अपने लिए किताब कब खोली थी? एक बार फिर से मैं सवाल रिपीट करती हूँ, आखिरी बार आपने सिर्फ अपने लिए किताब कब खोली थी? मतलब कोई ऑफिस की रिपोर्ट नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, या कोई सोशल मीडिया के कैप्शन नहीं, कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं, बल्कि एक किताब जिसे पढ़ने की कोई मजबूरी नहीं थी, बस मन किया और उठा लिया। सोचिए सवाल का जवाब मेरे, और फिलहाल मैं ले चलूँगी आपको उन पुराने दिनों की यादों में।

0: পরিশানি।
1: পার্সোনাল লোন অফার স্যার,
2: আবার এক্ষুনি ব্লক করছি।
1: দুবাইয়ে ফ্রি ট্রিপ,
2: এটাকেও ব্লক করছি। আর কতগুলো নাম্বার ব্লক করব?
3: শুধুমাত্র ফোনে ব্লক করলে স্প্যাম কল আটকানো যাবে না, কারণ প্রতিবার সেটা আসে একটা নতুন ফোন নাম্বার থেকে।
2: তাহলে
3: কলটা আনসার করে ট্রাই DND অ্যাপে রিপোর্ট করুন। ব্যাংকিং, ট্রাভেল, ইন্স্যুরেন্স থেকে একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে সাবমিট করুন। আর এই পুরো কাজটা করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে।
2: এর ফলে কি সবার জন্য স্প্যাম কল কমে যাবে?
3: হ্যাঁ, রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই অ্যাকশন নেওয়া হবে। শুধু ব্লক না, রিপোর্ট করুন। ট্রাই DND অ্যাপ আজকেই প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন এবং রিপোর্ট করতে শুরু করুন।
4: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चलिए, हमारे जो पहले कॉलर है अपने जवाब के साथ हमारे साथ हाजिर हो चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
5: जी, नमस्कार पापिया जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
4: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जायन क्लासिक में, और गुड इवनिंग टू यू टू।
5: जी, मैं मोहम्मद नासिर, दलियागाटा, कोलकाता से।
4: जी नासिर जी, कैसे हैं, हालचाल कैसा है, और घर परिवार में सब कैसे हैं?
5: सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है। आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो आवाज थोड़ी सी फंसी हुई हो सकता है कि महसूस होता होगा आपको।
4: बिल्कुल, ये बिल्कुल है, लग रहा है कि आपकी तबीयत पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, आप थोड़े से नासाज है तबीयत आपकी।
5: जी जी, थोड़ी सी नासाज है। उम्मीद करता हूँ, दवा मैंने मेडिसिन लिया है, उम्मीद करता हूँ मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा।
4: एकदम, वेदर भी ऐसा है कि सबको हो रहा है सर्दी खांसी अभी, तो होपफुली आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे एकदम। ठीक है,
5: तो
4: बताइए
5: पापिया जी, आज जो आपने टॉपिक लेकर के आया है
4: जी,
5: आखिरी बार आपने किताब कब खोली थी? ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया। सबसे पहले मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
4: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। सबसे पहले
5: मैं जी, तो मैं तो इस स्टेज में पहुंच चुका हूं कि मेरे बच्चे भी अब पढ़ कर करके जॉब में चले गए हैं, तो लेकिन ये जो टॉपिक लाया है आपने कि आखिरी बार कब किताब खोली थी?
4: जी बिल्कुल, अपने लिए कब खोली थी?
5: अपने लिए कब खोली थी? तो मैंने अपने लिए जब किताब खोली थी तो मुझे तो याद नहीं कि मैंने उस टाइम में इंटर किया था। 1980 की बात है, 1980 में मैं इंटर किया था, और जब वो किताबें मेरी इधर उधर हो गई, लेकिन जब मैं अपने बच्चों का किताब देखता था, लेटे लेटे मैं अपने बच्चों का किताब देखता था, जब वो बच्चे स्टडी करते थे, तो मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ कुछ सिलेबस इस तरीके का देखता था जो मुझे अपने पढ़ाई के दिन याद आ जाया करते थे। और मैं ये महसूस करता हूँ कि बिल्कुल यही वो मैथ है, बिल्कुल यही वो इतिहास है, या फिर बिल्कुल यही वो क्वेश्चन है जो मैंने भी कभी अपने एग्जाम में दिया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ आंसर मेरे बिल्कुल मिलते जुलते रहते थे। तो अपने बच्चों को किताबों को देख करके मैं अपनी याद ताजा कर लिया करता था। अच्छा। और मुझे लगता था मुझे ऐसा कि मैं अपने पढ़ाई के दिनों में चला गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये किताब।
4: अच्छा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी मैं अब सवाल कि कोई कहानी की किताब या फिर कोई कविताओं की किताब अपने लिए आपने कब खोली थी, कब पढ़ी थी?
5: जी, कभी कविताओं और कहानी की अगर बात करेंगे तो मैं बिल्कुल कहानी की किताब मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था।
4: मतलब अभी पढ़ते हैं या फिर अभी अभी नहीं हुआ?
5: नहीं, अभी अभी अभी भी जब टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ।

0: लगता था मुझे ऐसा कि मैं अपने पढ़ाई के दिनों में चला गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये किताब।
1: अच्छा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी मैं अब सवाल कि कोई कहानी की किताब या फिर कोई कविताओं की किताब अपने लिए आपने कब खोली थी, कब पढ़ी थी?
0: जी, कभी कविताओं और कहानी की अगर बात करेंगे तो मैं बिल्कुल कहानी की किताब मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था।
1: मतलब अभी पढ़ते हैं या फिर अभी नहीं?
0: नहीं, अभी भी जब टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ।

0: और फिर वापस मुलाकात होगी आपसे, ओके? चलिए, थैंक यू,
1: शुक्रिया,
0: बाय। तो ये थे मोहम्मद नासिर जी, और जैसे कि आपको सवाल पूछा था कि आखिरी बार आपने खुद के लिए किताब कब खोली थी, और इस सवाल का जवाब याद करते रहिए आप, नासिर जी ने जवाब दे दिया है। और आज की चाय एंड क्लासिक्स की जो शाम है इसीलिए आपके लिए है, क्योंकि इन दिनों दोस्तों सिंगापुर से एक बहुत ही बड़ी दिलचस्प खबर आई है। वहाँ नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड ने रीड एसजी नाम से 5 साल का एक नेशनल रीडिंग मूवमेंट शुरू किया है। इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2026 को ही, और इसका सीधा सा संदेश है, हर दिन सिर्फ 15 मिनट किताबें पढ़िए। रीड एसजी चैलेंज में लोग अपनी रीडिंग सेशंस को लॉग कर सकते हैं और वर्चुअल रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं, यानी पढ़ने की आदत को थोड़ा सा गेम बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे किताब पढ़ने के लिए भी रिवॉर्ड, भी पैसे मिल रहे हैं? जी हाँ, और यही बात इस पूरी खबर को काफ़ी दिलचस्प भी बनाती है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां किसी चीज़ के लिए हमारे पास 15 मिनट नहीं होते, लेकिन मोबाइल उठाकर रील्स देखने के लिए 15 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं इसका पता नहीं चलता। तो बस सोचिए, हम कहते हैं ना आज बहुत काम है, किताब कल पढ़ेंगे, और उसी शाम हमारा फ़ोन कहता है एक छोटी सी रील देख लो या फिर ये वेब सीरीज़ देख लो। हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट, और जब हम फ़ोन रखते हैं तो पता चलता है कि 50 मिनट कब निकल चुके हैं, पता ही नहीं चला। सिंगापुर की ये पहल शायद इसी आदत को थोड़ा सा उलटने की कोशिश है, और मुझे इसकी सबसे दिलचस्प बात पैसे वाली नहीं लगती, मुझे सबसे दिलचस्प बात लगती है 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि किसी भी बड़ी आदत की शुरुआत शायद इतनी छोटी सी ही हो सकती है। आपको आज पूरी किताब ख़त्म नहीं करनी है, आपको आज 200 पन्ने नहीं पढ़ने हैं, बस 15 मिनट अपने लिए निकालने हैं। इसी बात पर चलिए, नासिर जी ने रिक्वेस्ट किया था ये समा समा है ये प्यार का सुनने के लिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में जब जब फूल खिले से, तो चलिए सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कहानी किताबों की। उन किताबों की जिनके पन्नों में सिर्फ शब्द नहीं होते, हमारे जीवन के कुछ किस्से भी छिपे होते हैं। याद कीजिए बचपन, गर्मी की छुट्टियां, दोपहर का समय, घर में बाकी सब लोग सो रहे हैं और आपके हाथ में कोई कहानी की किताब है। कभी नंदन, कभी कुछ, कभी कोई कॉमिक बुक, कभी कोई छोटा सा उपन्यास। किताब पढ़ने की कोई डेडलाइन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई आपका स्क्रीन टाइम आज 6 घंटे 47 मिनट है वाला मैसेज नहीं, बस आप और आपकी किताब। और शायद इसी वजह से बचपन की कुछ किताबें हम बड़े होकर भी नहीं भूलते हैं, है ना। फिलहाल हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ, डीदायपुर तेतुलतला बाजार से।
0: जी प्रकाश जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में। आप थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हट जाएं तो बेटर होगा। एक्चुअली आपकी आवाज काफी वीक हो रही है, रेडियो की आवाज है काफी वीक हो रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए।
1: हाँ, मुझे मोहम्मद रफी की आवाज में क्या हुआ तेरा वादा, वो सॉन्ग मुझे सुनना है।
0: ओके, और आज के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: आज के विषय में
0: चलिए कोई बात नहीं, लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ेंगे आगे, पर उससे पहले एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहूंगी, वो है डाक अदालत की। अधीक्षक RMS SB मंडल की अध्यक्षता में RMS SB मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SB मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111-01 में गूगल मीट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SB मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपने शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें। इसके माध्यम से अधीक्षक RMS SB मंडल हावड़ा 7111-01 को इस प्रकार भेज सकते हैं, वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपने ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों या शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि और समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641-5949 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस VC का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी नोट कर लें कि कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकारी आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। और फिलहाल प्रकाश ने जैसे कि रिक्वेस्ट किया था क्या हुआ तेरा वादा सुनने का, चलिए मोहम्मद रफी के और सुषमा श्रेष्ठा के आवाज में ये गाना सुन लेते हैं।

0: दोस्तों, किताब की कहानी खत्म हो जाती है लेकिन उसके साथ बिताया हुआ समय नहीं खत्म होता है। कभी कभी तो किताब से ज्यादा हमें वो जगह याद रहती है जहाँ हमने उसे पढ़ा था। किसी खिड़की के पास बैठकर, किसी ट्रेन में, स्कूल की लाइब्रेरी में, बिस्तर पर लेटे या फिर गर्मियों की छुट्टियों में पंखे के नीचे। और यही किताबों की खूबसूरती भी तो है। फिलहाल हमारे अगले कॉलर से चलिए जुड़ जाते हैं हम। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: नमस्कार जी, हावड़ा थेके
0: जी। निशाकर जी, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक है?
1: एकदम सब ठीक ठाक आछे दीदी। आपनी भालो आछेन? आपनार बाड़ी सबाई भालो आछे?
0: बिल्कुल, बस आप लोगों की दुआ है। थैंक यू सो मच। बताइए, आज के विषय के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप?
1: আমি যদি একদম শেষ যদি আপনি বলেন যে আমি গল্পের বই যে পড়েছিলাম, তো সেটা আমি বলতে গেলে যখন ট্রেনে যাতায়াত করতাম, বাইরে প্রথম যখন যাই, আমি একটা গল্পের বই নিয়েছিলাম। সেইটাই আমার এখন শেষ গল্পের বই পড়া। এখন তো এমনি আমি নিজেই যাত্রার বই পড়ি, ওটা পড়ার কোনো ব্যাপার। যেহেতু আপনি কবিতা বা গল্পের বই বলেছেন,
0: আপনি খুদকে এন্টারটেইনমেন্ট কে লিয়ে, খুদকে লিয়ে, वो किसी काम के लिए नहीं, खुद के
1: ना আমি নিজে নিজের জন্য। আমি কিন্তু এখন বর্তমানে আমি নিজে বিভিন্ন ধরনের যাত্রা বই পড়ি আমার নিজের মনটাকে ঠিক করার জন্য।
0: চলিয়ে, ये भी तो अच्छी बात है ना। ये भी तो पढ़ना ही हुआ, खुद के लिए ही पढ़ना हुआ ना। ये तो
1: এখন এখন বর্তমানে আমি পড়ছি কৃষ্ণহারা বৃন্দাবন ঠাকুরের বই।
0: ওকে ওকে,
1: এবং অলরেডি এইটা শেষ হয়ে গেলে আমার অর্ডার দেয়া আছে মাতৃ সাধক বানা খাপা।
0: মতলব অভি ভি আপকো আদত হ্যায় কি?

दोस्तों, एक एक किताब अलग अलग उम्र में हमें अलग अलग चीज़ें देती है। बचपन में वही कहानी एडवेंचर लगती है, किशोरावस्था में वही कहानी रोमांस या रिबेलियन बन जाती है, और 40 साल की उम्र में वही कहानी हमें जीवन के बारे में कुछ और बता सकती है। शायद इसलिए किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, किताबें दोबारा जी भी जाती है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी वो कौन सी किताब है जिसे आपने पढ़ा और उसके बाद कुछ बदल गया। हो सकता है कोई उपन्यास हो, कोई कविता संग्रह, कोई बायोग्राफी या कोई धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तक, कोई स्कूल की किताब जिसे आपने चोरी छिपे पढ़ा हो, या फिर कोई ऐसी किताब जो आपको किसी ने गिफ्ट की थी और आज भी उसके पहले पन्ने पर उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग मौजूद है। आप चाहे तो हमें फ़ोन करके बता ही सकते हैं, अगर उस किताब से जुड़ी कोई छोटी सी याद है तो वो भी, क्योंकि आज चाय एंड क्लासिक्स में हम सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन यादों की बात कर रहे हैं जो किताबों के साथ आती है। और शायद यही वजह है कि जो हाथ में पकड़ के फिजिकल जो बुक है आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। सिंगापुर की 2024 नेशनल रीडिंग हैबिट स्टडी में पाया गया कि 89% एडल्ट्स जो वयस्क हैं वो सप्ताह में एक से ज़्यादा बार किसी न किसी तरह रीडिंग करते थे, लेकिन बुक्स इंक्लूडिंग ई बुक्स जो कि हम फोन्स पे या टैबलेट्स में पढ़ते हैं को सप्ताह में एक से ज़्यादा बार पढ़ने वाला हिस्सा 28% था। यानी पढ़ना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं ये ज़रूर बदल गया है। हम न्यूज़ पढ़ते हैं, वेबसाइट्स पढ़ते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, लेकिन किताब के लिए बैठना वो अलग तरह की कमिटमेंट मांगता है। किताब आपको लगातार अटेंशन देने को कहती है, वो आपको बीच में कोई नोटिफिकेशन नहीं देती, वो नहीं पूछती आपका ये कंटेंट पसंद आया या नहीं, वो बस इंतज़ार करती है आपके लौटने का। और शायद यही आज की सबसे बड़ी समस्या भी है, हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, हमारे पास कंटेंट की भरमार है, इतनी भी कि कभी कभी समझ नहीं आता कि पढ़े क्या। एक तरफ 30 सेकेंड का वीडियो, वो दूसरी तरफ 15 सेकंड का रील, और फिर शॉर्ट वीडियो, फिर शॉर्ट आर्टिकल, फिर समरी, ये फिर किसी किताब की समरी की समरी। और धीरे धीरे हमारी आदत ऐसी बनती जा रही है कि हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी होती है, कहानी भी जल्दी, जानकारी भी जल्दी, मनोरंजन भी जल्दी, लेकिन किताब जल्दी नहीं होती। किताब आपको अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर चलने की बोलती है, और शायद इसलिए किताब पढ़ना आज थोड़ा सा रिबेलियन भी लगता है। मोबाइल कहता है स्क्रॉल करो, किताब कहती है ठहरो, मोबाइल कहता है अगला, किताब कहती है यही रहो। मोबाइल आपको एक साथ 100 चीज़ें दिखाता है, किताब आपको एक समय में एक दुनिया दिखाती है। और शायद हमें दोनों की ज़रूरत तो है, पर सवाल मोबाइल छोड़ने का नहीं, सवाल ये है कि क्या हम दिन में 15 मिनट के लिए उसे साइड में रख कर किताब पढ़ सकते हैं या नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, सोचते रहिए भाई, फ़ोन कॉल्स हम लेंगे क्योंकि फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लगातार। आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ में फिलहाल बाजीगर से सुन लेते हैं ये गाना।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: तो दोस्तों किताबों के बारे में बातें तो होती रहेंगी आफ्टर द ब्रेक, पर उससे पहले चलिए जान लेते हैं आज के परियोजना प्रस्तुति के बारे में। आज हम परियोजना प्रस्तुति में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। कई बार काबिलियत हार जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात साथ नहीं देते, लेकिन जब देश ऐसे बच्चों का हाथ थाम ले तो सपनों को रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही सपनों के लिए है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में आगे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक वजहों से रुक जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदायों के मेधावी छात्र इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के जरिए सहारा देती है। स्कूल की फीस हो, पढ़ाई का खर्च हो या आगे की तैयारी, पैसों की चिंता पढ़ाई के बीच न आए, यही इसका मकसद है। इस योजना के तहत छात्रों का चयन एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से होता है। मतलब साफ है, मेहनत की पहचान होगी और काबिल छात्रों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि एक भरोसा है। ये कहती है अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो देश तुम्हारे साथ है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना एक छात्र का नहीं बल्कि पूरे भविष्य का निर्माण करती है, क्योंकि जब पढ़ाई आसान होती है तो सपने अपने आप बड़े हो जाते हैं।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: तो दोस्तों परियोजना प्रस्तुति में आपने आज सुनी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। और आगे बढ़ते हुए चलिए हमारा पहला घंटा जो है चायन क्लासिक्स का वो अब अंत होने को है। बस एक ही मिनट शेष है तो हमारा साथ में से नहीं छूटने वाला इतनी जल्दी। 6 से 6:10 तक आप सुनेंगे न्यूज़, उसके बाद हम तुरंत वापस आएंगे हमारे विषय पर। और सवाल हमारा यही था कि अपने लिए, खुद के लिए आपने आखिरी बार किताब कब पढ़ी थी, बताइएगा, सोच के रखिएगा। फोन लाइंस खुली हुई है हमारी और सवाल के जवाब के लिए मैं इंतज़ार में रहूंगी, साथ ही साथ आपके गानों के रिक्वेस्ट के लिए भी। फिलहाल के लिए मैं पापिया लेती हूँ अल्पविराम, थोड़ी ही देर में वापस मुलाकात होगी आपकी और हमारी 100.1 FM गोल पर चाय एंड क्लासिक्स में।

0: होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा

0: दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्लासिक्स चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर
1: नमस्कार दोस्तों, शाइन क्लासिक्स के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो के घड़ी में समय हो गया है 6:10 का और मैं आप यहाँ हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से लेकर आए हो किताबों की दुनिया। जी हाँ, सिंगापुर की बात हो रही थी जहाँ पे 15 मिनट किताब पढ़ने पर गवर्नमेंट दे रही है आपको रिवॉर्ड्स। जी हाँ, जहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं कितनी देर आपने पढ़ाई की, मतलब किताबें पढ़ी। तो मेरा सवाल इसी मुद्दे पर ये था कि कौन सा वो आखिरी वक्त है जब आपने खुद के लिए कुछ पढ़ा होगा, कोई किताब, कोई कहानी की किताब, कोई कविता की किताब, कुछ भी। काफ़ी सारे पॉजिटिव आंसर्स आए हमारे लिए, हमारे पास फिलहाल। और भी इन सवालों के और भी जवाब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। बहुत सारे लिसनर्स, हमारे जो लिसनर्स हैं, होपफुली वो और कॉल करेंगे। दोस्तों, बातें हो रही थी जब किताबों की, तो कुछ किताबें जो होती हैं ना, वो हमारी पर्सनल क्लासिक्स होती हैं। वो किताबें जिसे हर कुछ साल पढ़ने के बाद फिर मन करता है कि वापस पढ़ें, क्योंकि हम बदलते रहते हैं और किताब वही रह जाती है। अगर मैं आपसे इस बात पर पूछूं कि आपके ज़िंदगी की पर्सनल क्लासिक कौन सी है, कौन सी किताब आपको बार बार पढ़नी अच्छी लगती है, तो वो कौन सी होगी? शायद हर किसी के पास अलग अलग जवाब होगा। किसी के लिए प्रेमचंद, किसी के लिए शरद चंद्र, किसी के लिए गुलजार, किसी के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर, किसी के लिए कोई थ्रिलर, किसी के लिए कोई ट्रैवल बुक, या किसी के लिए स्कूल में पढ़ी छोटी सी कहानी, और किसी के लिए शायद कोई ऐसी किताब जिसका नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वह किताब उनकी किसी खास इंसान की याद है। किताबें इसलिए भी खास हैं कि उन्हें पढ़ने का तरीका हमारा अपना होता है। कोई एक चैप्टर पढ़कर सोता है, कोई पूरी रात जागता है, कोई आखिरी पढ़ना पहले पढ़ लेता है, और हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो किताब खरीदते बहुत हैं पर पढ़ते कम हैं। अगर आप ऐसे भी हो तो आप भी अकेले नहीं हैं। किताबों की दुकान से किताब खरीदना भी एक तरह की उम्मीद ही है कि इसे पढ़ूंगा। फिर वो किताब शेल्फ पर चली जाती है कुछ दिन, कुछ महीने, कभी कभी कुछ साल, और फिर एक दिन अचानक हाथ में आती है और हम सोचते हैं, अरे इसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं।

दूसरा, किताबें पढ़ने के लिए किताब आपकी अपनी हो ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किताब खरीदना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी है ना। लाइब्रेरी की सबसे खूबसूरत बात यही तो है कि किताबें वहाँ आपकी नहीं होती, फिर भी कुछ देर के लिए आपकी दुनिया बन जाती है। एक लाइब्रेरी में जाइए, चारों तरफ किताबें, कितने लोगों की आवाज़ें बंद हैं उन शेल्फ्स में। किसी ने प्रेम के बारे में लिखा, किसी ने युद्ध के बारे में, किसी ने अपने गाँव के बारे में, किसी ने अपनी माँ के बारे में, किसी ने दुनिया की यात्रा की, किसी ने सिर्फ एक कमरे में बैठकर पूरी दुनिया कल्पना में लिख दी, और आप सिर्फ एक किताब खोलकर वहाँ पहुँच सकते हैं। बस यही रीडिंग की ताकत है। आप अपनी कुर्सी से उठे बिना यात्रा कर सकते हैं। किताब आपको किसी दूसरे देश में ले जा सकती है, दूसरी आपको 100 साल पीछे, तीसरी आपको भविष्य में, और चौथी आपको आपके अंदर। शायद इसी वजह से सिंगापुर के नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड रीडिंग को सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं, एक हैबिट की तरह देख रही है। रीड एसजी का उद्देश्य रीडिंग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना ही तो है, छोटे लगातार कदमों के जरिए। और मुझे लगता है कि इस आइडिया में एक चीज हम अपने लिए भी ले सकते हैं। रिवॉर्ड्स मिले या ना मिले, कॉइन्स मिले या ना मिले, कोई ऐप हमारे रीडिंग ट्रैक करे या ना करे, 15 मिनट हम खुद को दे सकते हैं। क्योंकि हर अच्छी आदत की शुरुआत किसी बड़ी घोषणा से नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी शुरुआत होती है। आज 15 मिनट, कल 15 मिनट, फिर शायद 20, फिर आधा घंटा, और एक दिन अचानक आपको महसूस होगा

कि आपने गद्दाब के साथ फिर से दोस्ती कर ली है, तो आज की शाम की चाय के साथ एक छोटा सा वादा ज़रूर कीजिए कि आज रात फ़ोन थोड़ा दूर रखेंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रील नहीं, बस एक कताब और सिर्फ 15 मिनट।

तो बातें हो रही थी कि दोस्तों आज से आप किताब पढ़ने की आदत करेंगे। जी हाँ, अगर किताब चुनने में परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, वही किताब उठाइए जो बहुत दिनों से आपके पास रखी है, जिसे आपने कई बार कहा कभी पढ़ूंगी, वो कभी आज हो सकता है, क्योंकि किताबें भी इंतज़ार करती हैं और कुछ इंतज़ार बहुत खूबसूरत होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे 15 मिनट में क्या बदल सकता है, तो शायद आप कह सकते हैं बहुत कुछ। 15 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म हो सकता है, एक कहानी शुरू हो सकती है, एक विचार बदल सकता है।

एक याद लौट सकती है, एक नई आदत शुरू हो सकती है और शायद एक इंसान फिर से किताबों की दुनिया में लौट सकता है। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है और मैं हूँ आपकी दोस्त भाभिया, और आज चायन क्लासिक्स में मेरी तरफ से आपके लिए बस इतनी सी गुजारिश है, किताबों को शेल्फ से निकालिए, उनके पन्ने पलटिए और सिर्फ 15 मिनट दीजिए। हो सकता है 15 मिनट बाद आपको लगे कि किताब को आपने कहीं खोला नहीं था, किताब ने आपको खोला। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की शाम की चाय थोड़ी और गर्म, थोड़ी और सुगंधित और शायद थोड़ी और यादों से भरी हो जाए। फिर मिलूंगी किसी और दिन चायन क्लासिक्स में। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपनी छोटी छोटी यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में लिखी होती हैं और कुछ हमारी जिंदगी में। तो फिर संभलने का वादा करते हुए मैं पापिया लेती हूँ विदा चायन क्लासिक्स से। फिलहाल वापस मुलाकात होगी ठीक 7:02 पर लेकर सुरों की महफिल। चलिए तब मिलते हैं और बातें होंगी ढेर सारी। तब तक के लिए कुमार शानू की आवाज़ में ये गाना छोड़े जा रही हूँ आप सभी के लिए।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे की इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
0: The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ। देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा।
0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
0: So benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई। HCL टेक को 3.4% का और इटरनल को 2.6% का लाभ हुआ। इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर

0: भारती एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई। पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks' equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
0: नजर डालने यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ।
1: And we are joined in by our first caller from Mumbai, Mukund. Mukund, welcome.
2: नमस्कार,
1: सवाल
2: नमस्कार जी, ये पूछना है सर जी, SC ST सीनियर सिटीजन स्कीमिंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने तक की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूएबल रह सकता है, 6 महीना 10 महीना या 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे।
3: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
1: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक, कितने टेनर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका।
3: नहीं मुकुंद जी देखिए, जहाँ तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है, उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते ज़रूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें।
0: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है, बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
3: नहीं देखिए मनोज जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो भी डेटा हो, चाहे वो आपका GDP का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है, साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है। लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास, आत्मविश्वास थोड़ा लौटा हुआ क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हुए हैं, अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाज़ार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद FIIs का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में FIIs ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाज़ारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा, ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है।
0: जी आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
4: हेलो गुड इवनिंग सर, यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? तो दूसरा सवाल है कि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू।
3: देखिए रत्नाकर जी,

0: तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पे उसको उस पे रजामंदी जरूर दे दी है, लेकिन अभी उस पे आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पे लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज जो रिएक्शन था उसका कोई उसकी किसी वजह से था। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहाँ पे बॉन्ड डील्स हाई थी, वहाँ की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी। और आपका एक और सवाल था
1: आईटी सेक्टर,
0: तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूँ इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। और मुझे लगता है, जैसा आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है। और दुनिया में जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है, उसमें एक विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि, और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं। तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
1: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
2: नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता था कि ये आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है। और दूसरा सर, मैंने आईटीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लूं क्या कि मेरा आईटीआर प्रोसेस हो गया कि
0: नहीं? आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला? आपने
2: रिफंड मिल गया है सर, मुझे सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
0: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है। और साथ साथ वो एक जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेज़ी थी जो $100, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहाँ भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीज़न वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेज़ी देखी।
3: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय ऑनलाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज़ धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज़ हम तक इको के रूप में पहुँचते रहती है, जो आपकी आवाज़ सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
4: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one. And of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality, affecting the market in the coming days?
0: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yes. By Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because

0: the high crude oil prices. So might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors, plus I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence, because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: All right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा. यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 1.3% और लंदन का फुटसी 100 1.1% मुनाफे के साथ कारोबार कर रहे थे. यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है. क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यदि विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
0: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द प्राइमरी रीज़न, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में
1: जी.
0: तो मुझे लगता है इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज़ हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है. तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के
1: जी. दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश. स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार मार्केट मंत्री टीम को, नमस्कार. मेरा
1: जी नमस्ते.
2: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी मतलब क्रिप्टो अगर खरीदते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी, तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो, जैसे नेक्सा वगैरह हो गया, तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा, ये जानना था प्लीज.
0: नहीं अविनाश जी, देखिए जहाँ तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है, उसको आपको अपने ITR में दर्शाना होगा. और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी. ऐसा कोई TDS देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, उससे अगर आपको कोई भी इनकम, अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल, तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देनी होगी.
3: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई. वेलकम
1: रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से. आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मित्रा.
1: नमस्ते.
4: मेरा क्वेश्चन है कि ये FII जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे, उसका जो है विड्रॉ कर लिया है. ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं. और DIIs जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब SIP के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है, कॉम्पनसेट हो रहा करके, वहां तक तो ठीक है. इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा. तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है, ये जानना चाह रहा हूँ. थैंक यू.
0: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है. पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि पीछे जो

0: बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशन दिए थे उनको, उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश एफआईआई इसका बढ़ा था, लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका जो उनका सिद्धांत है निवेश का एफआईआई इसका, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो जब अमेरिकी बाज़ार में हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाज़ार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाज़ार हैं, एशिया की बाज़ार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहाँ पे भी वो जो बाज़ार हैं वो अच्छा कर रही हैं। तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहाँ निवेश करके ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई ख़राब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं।
1: राइट, एंड some other stories, the combined index of core industries ICI recorded cumulative growth of 4.8% year on year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August. Year on year basis.
2: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव। केशव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है पीलेहर रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और होता कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
0: नहीं केशव जी, देखिए जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाज़ार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और ख़ासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें।
1: An India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
1: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, SEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
2: स्पीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए।
5: नमस्ते। नमस्ते सर। ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट

0: का क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
1: नहीं देखिए रंजीत जी, जैसा कि आपको पता ही है फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं, और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है। और जहाँ तक उसके निगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 बेसिस पॉइंट्स का कोई बहुत ज़्यादा बाजार पर कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो, हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं।
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन पर ₹2000 तक का लेन देन मुफ्त रहेगा। इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल UPI के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेन देन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने UPI के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार UPI का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा है कि MDR से प्राप्त राजस्व का उपयोग UPI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा, ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए NPCI ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
3: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या ऐप है गुल्लक करके एक ऐप है जो एक्चुअली टेक्स द फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट इन परचेज?
1: नहीं देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें।
4: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
2: भारतीय सर्राफा आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 1,53,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दोनों को भी धन्यवाद।
4: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA

0: मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका की भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी जल विवाद बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में होने के कारण विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद अधिकरण के पास लंबित मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने शाही परिवार और दुबई की जनता के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की संवेदनाएं शाही परिवार और दुबई की जनता के साथ हैं। जापान एशियाई खेलों में आज निशानेबाजी में भारत ने 3 पदक जीत लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। इससे पहले कल एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीता था। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
3: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे
6: हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: ফিরে এলাম আবার কথায়। কথায় মানে আজকের হ্যালো ফার্মার। এর আমাদের অতিথি যিনি রয়েছেন প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী, আরো স্পেসিফিক্যালি বললে কীট তত্ত্ববিদ ডক্টর শীতেশ চট্টোপাধ্যায়। তার সঙ্গে আপনারা কথা বলবেন 2248085 এই নাম্বারে, সরাসরি ফোন করে 9903059992 এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজ করে, এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা যে লাইভ দেখছেন সেখানেও কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পোস্ট যেটা রয়েছে সেখানেও।
10: আর আমাদের পরের প্রশ্নে আমরা যাব, মানে একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করছে ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে, যে অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমাটি কি এবং এটার প্রয়োগ কিভাবে এবং কেন করবেন চাষি ভাইরা?
11: হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। এখন চাষি ভাইরা পোকা দেখতে পেলেই অনেক ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রয়োগ করেন, কিন্তু সেরকমভাবে কীটনাশক কোনো প্রয়োগ করার দরকার নেই। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা একটা পদ্ধতি বার করেছেন গবেষণা করে, যেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমা বা অর্থনৈতিক চৌকাট বা ইটিএল, ইংরেজিতে বলে ইকোনমিক থ্রেশহোল্ড লেভেল। চাষি ভাইরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রামে এটা শুনেও থাকেন। এই অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমা দেখাটা কেন প্রয়োজন সেটা আমি প্রথমে বলি, যে কীটনাশক পোকা দেখা মানেই কিন্তু আমরা সেখানে কীটনাশক প্রয়োগ করব না। প্রথমে চাষি ভাইদের আমরা বলবো যে কোনাকুনিভাবে আপনাদের যে জমি আছে সেখানে আপনারা হাঁটুন, হেঁটে

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: আমরা যখন ঠাকুর বাড়ির কথা বলি, তখন শুধু পুরুষদের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার কথা বললে পুরোটা ছবি হয়তো পাওয়া যাবে না। কারণ এই পরিবারের নারীরাও নানানভাবে সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশের অংশ ছিলেন। কারণ ঠাকুরবাড়ির নারীরা গান শিখেছেন, সাহিত্য চর্চা করেছেন, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠার পরিবেশ ছিল এমন এক পরিবার যেখানে নারী পুরুষ উভয়ের সেই সাংস্কৃতিক উপস্থিতি ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জুড়ে নারী চরিত্রের যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি, তার পেছনেও তার জীবনেরই পারিবারিক সামাজিক অভিজ্ঞতার একটি বড় ভূমিকা ছিল। ঘড়ির কাঁটা বলছে রাত 10:59, সময় হয়েছে আবারও সংবাদ বিরতিতে যাওয়ার। 11:00 থেকে 11:10, ঠিক এই সময়টি আমরা সংবাদ বিরতিতে থাকব। তারপর অবশ্যই আমরা সঞ্জয় কল্পলাল ফিরে আসব হিয়ার মাঝে নিয়ে 100.1 FM গোল্ডে। শুনতে থাকুন, সঙ্গে রাখুন আজ হিয়ার মাঝে শুধুই রবীন্দ্রনাথ। ফিরে আসছি 11:10।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य

सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।

বুঝেছি তোমার প্রেমে বিভোর থেকে, চোখের আর এক নাম নয়ন কেন।

এখন শুনবেন ছায়াছবির গান, প্রথম ছবি মৌচাক, শিল্পী আশা ভোঁসলে।

এবারের গানটি গেয়েছেন মান্না দে, ছবির নাম নিশি পদ্ম।